0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: तू सुख साने ने रजा कल मंदिर मंदिर के नाम मत आकाश के आराम पिसले कम से दिखूं क्यों चला रहे हैं मैंने कहा तीन मैंने कहा काम रहे हैं तीन मैंने कहे अन्ना ना फिक्री जानी जरूर रिस्क के जान को वाह ये जन के जान मंदिर के नाम मत आकाश के आराम है ये जन के रिस्क सां पा ना जब फिक्री जान मु उतन मान लेकिन फिर सुन दे साना को दे मना रखा ना सेमु जान ले फिर साना दे फिर मना रखा ना तेंदे ए देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांग मिरी जाने सें जब दे दे
2: क्या ना का फिर ना सु पता रखो जान ये ले फिर ना का फिर ना जाने मार सुट सा उन अच्छा फिर ले तीन रोग पिया करने के
3: ए सुट सान ले वचने मुझे मात Saya nak buat apa? Suit tu jadi semua fikirlah tentang suit. Suit sahaja, jadi suit. Suit tu saya nak kafina. Timnya nak kerjasama tu, mata tu tiwala sahaja. Saya susah sahaja mula lah sahaja tu naik sendu. Saya mampu yeri naja yang zaman tu ni mampu naja rakyat sini. Tapi tanjo nak tunggu apa ni?
4: Saya nak kafina suit tu. Le ulah nanti tunggu sa. Apa ni? Tiko nak kene ciri arah tempat nane tiko. Arakan panrinwe teh itu tamat Madagaskar. Teh sutun mitu san. Ye fakih reza nawasiru teh mafnasha neto nareu apa teh nawe makafit ku anti lusmam cikti teh nawe semana sal ti san ye. Ye cipto benda ni jalan famana nane cikam manukan cik.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuaf.

0: तुम कुफा भी
1: रेफमिसी इन फितुराना चिजाकन फोका चिमेंची हमने नारन नी फ्लारंबे जे चिंतुना बस फ्लारंबे आराध्य चापन रोनी फोए चिनी तिन फितुना नरोती फितुगुनियाल नरीटन नी नंबर फुल्टोला रावो नी दिन संदाले बिन फोका अमनाले न मार्टे तनीचने तुकुन फनीर टेटे नरोता मिसाइ

0: गिलास तुम कफाफी
1: रिफा म्यांस नुल्ला नुना तिम्यास अंतिक्यां सहया आर मनाम प्यास यान रतेर कड़े ते तंबाउप शिक्या दिमनुना निफितुंड्रान आर जन मनुना निफितुंड्रान सान्या तिम्यास फत्म्यात से जकूर फम्यासा आम फापन सुना आर म्यासा न्यापंदिया निफितुंड्रान मातेत्या मायनों ने बात क्यान फरानिस नानगना आर निसन ताकें तिफना फोसांतिया रानिस वलुने कोलोनेल मिकाएला फारुआन मालाकास मेरा मेंजा आर साथीके नुम्तेने जान सिसाबकने दान जान सिसाबके निसलुतेन जान्या फसान मसावा जान तोम ततारं तिफिरेनेंती कदेमानों आत्सावं तिकेरेटरेट Tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity firenena ity. Tsy mora zany, sarotra zany, kanefitsika tsy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy dia tena manampy marina, miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka, ohatran'izao hitantsika izao.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.